करने पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं उनके शर्मा के झुकने पे, या लिखूं उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं।

मोटी बातें तो होती रहती हैं, ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, ये छोटी मोटी बातों से कहां

0: दुआ लेंगे, मुझे लगता है कि एवं बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे, मुझे छोड़ के जाने वाले जा छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे।
1: राजेंद्रना

0: अरे सोच तो सही, क्या हैंडसम बच्चे होंगे हमारे, मेरे गुड लुक्स और मेरी अकल।
1: तुम क्या चाहते हो लाइफ से बने?
2: रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।

0: समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो?
1: तो क्या नैना?
0: मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।

0: Twist. Do your thing, honey. Rade ke megahertz tv fm megadi ga kuria megenda tea time request me show ga me ha hisabun na not ko fa baavering etere baavre ka mi wahka da kalani assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
0: hatim
1: ade
0: hatim ke hene
1: danga
0: ki kollani ti megadi
1: kamen kura
0: koba musumiye drangala toti
1: aa reet koti
0: reet koti beecha gos nulanta miyadu
1: aa
0: miyadu ves nudan kina vi beecha ruli hata genta tiuleni
1: e samamen ne tima
0: hama ehem bunai rang ehem bunane e samamen ne te hatim kura ka me hatim kuram manennu
1: uni ke samamen kurima harendane
0: aha ha hatim varagina etanadde
1: No, samamen kurima bihaiver
0: Asluta. Bure jahala visnu dande. Mi uffa da haviru, riti havirega. Kiwe tanu dani mi har koba tekkala friendo.
1: Onnane.
0: Deverin dana me nu haviru, hinga maja salam. Duvvalam.
1: Em samamen adu bala.
2: Hatim ti konra shetta.
0: Formula.
2: Formula, nu lahi ku riti rashen anekka.
0: Bodu bodu riti rashake. Do hatim. Hatim makam dani tira shuge kong hisabeng emme bodak kam dani kon thane tira shun miski mago ek kom mage ta kon cheng hunani
1: e miski mage
0: buna bay ta hun thane ti hem bunne samay nenge
1: ei nege do
0: ane
2: joli fati ba hatta fun nakal thane ta
1: nu neke
2: hama miski mago
0: ਕਮ ਖਾਸ ਕਮ ਹੋਰੀ ਮਦੋ ਲਾਈ ਕੁਆਨੇ ਵਾ ਕੇ ਮੀ ਹਣੀ ਹਾਤੀ
1: ਸੁਨਨਾਨੇ
0: ਐ
1: ਬੀਚ ਵੇ ਸੁਨਨਾਨੇ
0: ਇੱਕ ਤੁੰਡੀ ਅੱਦਾ ਬੀਚ ਉਨਣੀ ਐ ਮਗੂਗਾ
1: ਨੂਨੇ ਕੇ
0: ਦੇਂ ਹਮ ਨੂ ਬੁਨਾਣਾ ਖਾਸ ਵਾ ਕਮੇ
1: ਐ ਹਮਾਰ ਤਨ ਕੋ ਫਿਨੀ ਜਹਨੇ
0: ਫਿਨੀ ਰੋਲੀ ਤੇ ਜਹ ਤਨ ਗਈ
1: ਆ
0: ओके हम रोड चाहिए थी कम हमी बाला नींगे आतिम
1: आद
0: काम उधर नहीं फिनी रोड चाहिए थी कम हमी बाला नींगे ये कंगे हाँ
1: आद
0: कोबा दें सैकोलेंगे चे बॉयफ्रेंड हैं भैया
1: आ
0: सैकोले वेस बॉयफ्रेंड
2: आतिम गाँव में दो अस्वी मा दें तेरा शुगर नेत्ते वेस हासा काम है वेस
1: आ नहीं
2: नेत्तो
0: उतिम गमी फारो गाँव में दो अस्वी फाह करन दो आतिम
1: कुमार
0: सानु दो एरे जहिमा रीति भी
1: आ
0: एहम भी कोचे काशे तमे कियानी मिनवेगा हातिम मवस नेंगे
1: पान
0: काशे कियानी हां
1: कौन कौन से समाज है ने पान का
0: समाय तमे लवती जाय देनी
1: आ
0: क्यों ने कान दे दी फल कुरा कर नो हम भैया
1: आ
0: अहा तिहन न हदा देंगे हम कुछ ने तहास कोल दान किया बलिस्टे वरा बोड़ बोड़ दिस्टे किया बा शाहमा वैसे बहने शाहमा इंगे नु
1: नेगे
0: एक कल बीआरपी गोल्ड ने नु एवं न हो दिए नु
2: अरे हाथी मरने इंगे फादर
0: टिकटो को कवस्ती उड़े नहीं हाथी मरने नु
1: बेली में ऐसे
0: बेलीं दो एक कुछ जाए मिहारेंगे चेतो
1: शाहमा या
2: थैंक यू

0: नुआ दी है 1 MHz दिवे ही FM फातिस नमा दो वागुत
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह